0: systems are offline.
1: Number one for today's hits and all-time favorites.
2: 102.7.
3: It's East FM.
4: कैनेडा सरकार जमानत अते सजा दे कानूना विच सख्ती ल्या रही है। हिंसक अते बार बार अपराध करन वालियां नू भाईचारे तो दूर रखन लई सिस्टम विच सुधार ता जो तुसी घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
2: This is East FM 102.7.

0: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
1: कनाडा सरकार सरहदी सुरक्षा लई सख्त कदम चुक रही है। ड्रग्स अते बंदूकां दी तस्करी नूं रोकिया जा रहा है, जिस नाल तुसी भाईचारे विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कनाडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
2: You're listening to your favorite FM station 102.7 East FM. Turn it up.

0: Kings Radio Station, East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
2: New era, new beginning. This is our chance.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
3: कोई समझा दे घर वाली को, बस मैं करें कैसे, कोई समझा दे घर वाली को, बस मैं करें कैसे।